0: और शहीद हो गया। अरे क्या जरूरत थी उमर कैद ले लेने की? अच्छा भला था गले में फंदा डालिया।
1: क्यों जी, क्या खराबी है हमारी लड़की में?
0: आपकी लड़की इतनी बड़ी, वैसे आपकी उम्र क्या?
2: डक साबुन का कमाल है ये, और क्या।
1: अच्छा वो आपका
0: हो गया।
1: वैसे वो गले में फंदा डालने की क्या बात कर रहे थे? जब माला डाली होती है तब क्यों कछुए की तरह गर्दन आगे कर देते?
0: वो क्या है कि इस कछुए को मालूम नहीं था ना कि इस गांव में आप भी हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका नाम?
1: बर्बादी।
2: क्या बात है आदि,
0: शादी बर्बादी होती है।
1: अच्छा तुम नहीं सही, लेकिन यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे लिए हंसते हंसते बर्बाद हो
0: जाएंगे।
1: करेला बैठ के चबाना, तुम और तुम्हारे चेले।
2: आदि क्या कहेगी यार?
3: मुंह मत लगाना आदि, कड़वी चीज है।

0: अच्छा ये लड़की कौन है जो अभी अभी शगुन देगी?
1: क्या तुमको भी शगुन चाहिए क्या?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत बोलती है ना, बहुत तेज है
1: मिस्टर। वो मेरी बेटी है।
0: बेटी? नहीं, दिमाग बहुत तेज है, गड़बड़ हो गई, मर गए यार। वैसे उनका शुभ नाम क्या है?
1: लड़के बारात में आए हो वरना परात में डाल के गुन देता।

0: दादी, असल में मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था।
1: मेरे पिताजी भी तुम्ही को ढूंढ रहे हैं।
0: अरे बाप रे, अरे बाप रे। हस्ती अच्छा, वैसे मैंने तो सुना था कि गांव की लड़कियां बड़ी सीधी सादी और भोली भाली होती है, शर्मीली।
1: काकी इधर आओ।
0: काकी,
1: ये सीधी भी है और शर्मीली भी।
2: नमस्कार।

अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस से मिलने का किया था वादा, आपसे दोस्ती निभाने का भारतीय सीमा का इरादा। स्वाद का जायका इस शो के ऑडियंस को आरजे भारतीय सीमा का प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। काई हाल है थारा भाई, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। अब का बताएं भाभी, गर्मी ने तो सबकी हालत ही बेकार कर दी है। हमें तो बड़ी दिक्कत सी हो रही है, पर का करें, हमारे प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाने हमें आना ही पड़ता है। वैसे अच्छा गाना और टेस्टी खाना, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब रोज रोज क्या बनाए ये तो बड़ी मुश्किल है, राइट? इस सवाल का तो जवाब किसी के पास नहीं होता, तो क्यों ना आज हम आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस के लिए कुछ जुगाड़ रेसिपीज बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि गर्मियों में सिंपल और होममेड खाना खाने से हमें दिन भर फ्रेश फील होता है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी सुनने के लिए, जिसका नाम है गुलाबी दही। गुलाबी दही, इस नाम को सुनकर आपको हो रही एक्साइटमेंट को मैं हमारे स्टूडियो में भी फील कर सकती हूँ। वैसे देखा जाए तो ये रेसिपी, गुलाबी दही को आप एज अ योगर्ट यूज कर सकते हैं। जब गर्मी ज्यादा बढ़े और कुछ खाने का मन ना हो, तब आप ये जुगाड़ रेसिपी बना ही लीजिए। हम सब जानते ही हैं कि सुबह के टाइम दही खाना हेल्दी होता है, क्योंकि दही से पेट शांत रहता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण मीन्स हमारे नटखट कान्हा, उनको भी दही, दूध और मक्खन खाना बेहद पसंद है। वैसे आपकी ब्यूटी रेजिम में आप दही खाना ऐड करें तो आपके बालों और स्किन को पोषण मिलेगा। तो चलिए हम और आप मिलकर खेलते हैं, कौन बनाएगा पिंक दही। हमारी पहली रेसिपी है पिंक दही। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश दही 2 बड़ी कटोरी, कद्दूकस किया हुआ गाजर 4 चम्मच, ग्रेटेड कैरेट्स, ग्रेटेड बीटरूट 4 चम्मच, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली।

योर ओन रेडियो और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे मेकअप करना सारी लेडीज को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में मेकअप को संभालना मुश्किल होता है। हमारी आज की रेसिपी मींस पिंक दही को खाने से आपकी स्किन पर एक ग्लो आएगा, मींस 24/7 मेकअप है कि नहीं। वैसे सुंदरता सच्चाई की मुस्कान है जब वो परफेक्ट आईने में अपना रंग दिखाए, और सच्चाई यही है कि हम आचार्य 90FM के ऑडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब दोस्ती निभाना है जो हम कर रहे हैं। वैसे आपके हाथों से बनी वो कौन सी रेसिपी है जो आपके दोस्त को ज्यादा पसंद है? भाई मुझे तो मेरे दोस्तों के घर पे बनने वाला ट्रेडिशनल खाना बहुत पसंद है। अब चलिए आज हम बात करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस सिंगर आशाताई भोसले की। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि गाने के अलावा अपने हाथों से खाना बनाना और उसे औरों को खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आशाताई उस इंटरव्यू के दौरान जीरा, धनिया और सौंफ से बने एक मसाले का जिक्र कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि आशाताई एक रेस्टोरेंट चेन की ओनर थी? आशाज नाम के इन रेस्टोरेंट्स के 10 आउटलेट्स मिडिल ईस्ट और यूके में हैं। जितनी मीठी आशाताई की आवाज है उतनी ही टेस्टी रेसिपीज को बनाना आशाताई जानती थी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आशाताई की बताई एक स्पेशल मसाला बनाने की रेसिपी सुनेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड।

सीधे टुकड़ों में काटिए, मतलब लंबा लंबा काटिए। फिर उन टुकड़ों को हल्दी, नमक और ये नॉन स्पाइसी मसाला लगाइए। एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कीजिए, फिर लो फ्लेम पर मसाला लगाई हुए भिंडी के टुकड़े डालिए। फिर उस पैन पर ढक्कन रखकर 5 मिनट तक उसे पकने लीजिए। 5 मिनट के बाद उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे मिक्स कीजिए। वापस उस पे ढक्कन लगाकर 2-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाइए। इस तरह से क्रिस्पी भिंडी फ्राई तैयार। गर्मियों में चिप्स या जंक फूड खाने की बजाय आप ये क्रिस्पी भिंडी खाएं और अपनी सेहत बनाएं। वैसे छाछ, कचुम्बर या फिर सैलेड में भी आप ये नॉन स्पाइसी मसाला यूज कर सकते हैं। हर रोज बनने वाली सब्जी या दाल में भी आप ये नॉन स्पाइसी मसाला 1 या 2 चम्मच भर के ऐड कर सकते हैं। वैसे इंदौर स्टाइल पोहा में सौंफ यूज होती है, राइट? तो अगली बार पोहा बनाते वक्त आप ये नॉन स्पाइसी मसाला डाल कर देखिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। हमारी अगली जुगाड़ रेसिपी एक महाराष्ट्रियन सब्जी है जिसका नाम है हुआ भाजी। हुआ भाजी ये एक नॉन फायर टाइप की रेसिपी है। वैसे हुलगा, कुड़ित, इनकी भाजी को भी हुआ भाजी के नाम से जाना जाता है। जिस हुआ भाजी की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए इसकी रेसिपी सुनने। हुआ भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: स्प्रिंग अनियन मींस हरी प्याज यानी कि पातीचा कांदा। इसे धोकर किसी साफ कपड़े से इसका पानी पोछिए, फिर इसके बारीक टुकड़े कीजिए। इस तरह से कटी हुई प्याज हमें चाहिए 2 बड़ी कटोरी भर के। फिर चाहिए नमक स्वादानुसार, लेकिन यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, कच्चा तेल 4-5 चम्मच, दैट्स इट। अब हम सुनते हैं इस हुआ भाजी को बनाने की रेसिपी। सबसे पहले बारीक कटी हुई हरी प्याज को नमक और मिर्ची पाउडर लगाकर 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। इससे नमक और तीखेपन का स्वाद उस सब्जी में अच्छे से मिक्स होगा। फिर उसमें कच्चा मींस अनकुक्ड यानी सादा तेल बिना गरम किए ऐसे ही मिक्स कर दीजिए। इस तरह से तैयार हो गई है हमारी जुगाड़ रेसिपी जिसका नाम है हुआ भाजी। अब आप इसे ज्वार की रोटी के साथ मजे से खाइए। वैसे महाराष्ट्र के गांव में इसे कंफर्ट फूड के नाम से जाना जाता है। जब मुंह में बेस्वाद सा टेस्ट हो या फिर कभी आपको खाना खाने का मन ही ना करे तब आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए। लगभग 10 से 15 मिनट में रेडी होने वाली ये जुगाड़ रेसिपी आपको स्वाद का जायका जरूर याद दिलाएगी, क्योंकि हमारे दोस्तों की सेहत का ख्याल रखना यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। वैसे पुराने जमाने में बाहर से खाना ऑर्डर करने का सिस्टम तो था नहीं, तब ऐसा जुगाड़ करके अपनी फैमिली के लिए खाना बनाया जाता था। वैसे इंस्टेंट मींस 2 मिनट्स टूडल से कई ज्यादा हेल्दी तो हमारी जुगाड़ रेसिपीज है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को बदलने की। भाई वो कहते हैं ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, अब समझदार को इशारा ही काफी है। देसी फूड खाओ और अपनी सेहत बनाओ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सिंह। वैसे जुगाड़ रेसिपीज को बनाते वक्त गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से किसी जबरदस्त रेसिपी को बनाते समय मेरे से कंफर्म गड़बड़ तो हो ही जाती है। वैसे मोस्ट ऑफ द डैडी लोग नौसिखिए बच्चों को किचन के काम सीखने के लिए सपोर्ट करते ही है, नो डाउट। लेकिन उस वक्त नौसिखिए कुक की मम्मी अलर्ट मोड पर एक्टिव हो जाती है।

अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने, सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरियां ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेटो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ।

सो स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, गुप्त मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखें गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खोल उठा, उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी, वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद, आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी, सब भागने लगे। अशफाक पीछे रह गया, एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी। तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा,

शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो? हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा, क्रांति में लोग कहानियां नहीं लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी, तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई, उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून थूकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कांटेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी,

अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी। वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग। आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले, आनंद आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में 3 माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी। अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती, जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून 1 आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए
छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे ये कहानी, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त RJ शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।

0: अजहरन एनडी एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है ना भाई? सब ठीक होना ही चाहिए क्योंकि स्वाद का जायका इस शो पर बनने वाला खाना और बजने वाला गाना आपको जरूर पसंद आएगा। पिछली बार मैंने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए भाई हमें तो वापस आना ही पड़ता है। अर्ज किया है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आप आए तो खुदा हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं हम क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। बड़ी शिद्दत से हो रहा था आप ही का इंतजार, स्वाद का जायका इस शो पर स्वादिष्ट रेसिपीज की भरमार। आप ही हो ऑडियंस जी, हम दर्द हम निवाला और साथी, आचार्य 90 एफएम के इस शो पर आपकी मौजूदगी ही है काफी। आप जैसे दोस्तों से ही है खुशहाल ये जिंदगी, सलामत रहे आचार्य 90 एफएम के दोस्त, ए खुदा सुन ले मेरी बंदगी। वैसे अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम मास अब शुरू हो गया है। इस अधिक मास में सात्विक पद्धति से अनेक काम किए जाते हैं जिसमें भगवान की आराधना और व्रत भी शामिल है। व्रत रखना मतलब उपवास रखना, राइट? और व्रत में बनते हैं कुछ खास व्यंजन। वैसे देखा जाए तो व्रत और साबूदाना ये जोड़ी तो एकदम पक्की है। साबूदाने से बनी खिचड़ी या साबूदाना वड़ा ये सब तो कॉमन रेसिपीज है। भाई गर्मी इतनी है कि तली हुई चीजों से हम थोड़ी दूरी ही बना लेते हैं, तो फिर इस साबूदाने की ऐसी कौन सी रेसिपी को बनाएं जिससे बगैर तले हम आसानी से बना सकते हैं? सोचिए तो, एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में आसान भी हो और स्वाद में भी लाजवाब हो, जिसे देखते ही आपका मन ललचाए और जिसे टेस्ट करते ही आप कहे आए हाय, जो खाने में हो हल्की और पेट पर ना पड़े बल्कि, जिसे खाकर व्रत करने वाले को मिले ऊर्जा और खुश हो जाए घर की सारी प्रजा। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ साबुदाना खीर इस व्रत स्पेशल रेसिपी की। ये एक भारतीय मिठाई है और इसे खास तौर पर व्रत और त्योहारों में बनाया जाता है। साबुदाना खीर का मेन इंग्रेडिएंट है साबुदाना। ये छोटे छोटे मोती की तरह गोल होता है। भारत में इसे टैपियोका नाम के एक पेड़ की जड़ से बनाया जाता है। इसे कसावा या कप्पा भी कहते हैं। भारत में सबसे पहले साबुदाना का उत्पादन तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। वैसे साबुदाना खीर को खाने के लिए आप व्रत रखे ऐसे कुछ नहीं है भाई, हम तो आचार्य 90 एफएम के हमारे खास ऑडियंस के लिए दोस्ती निभाने के लिए आज साबुदाना खीर बना रहे हैं। एक बार साबुदाना अच्छे से भीग गया तो इसे फटाफट बना सकते हैं और फिर गटागट खा भी सकते हैं। तो चलिए साबुदाना खीर को बनाना शुरू करते हैं। साबुदाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, आधा कप साबुदाना। यहाँ पर हम बड़ा वाला साबुदाना यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो छोटा वाला साबुदाना भी यूज कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए दूध 1 लीटर, चीनी 5-6 चम्मच, इलायची पाउडर 2 चुटकी, केसर के धागे 5-6। इन्हें 1 टेबलस्पून दूध में भिगो कर रखिए। मिल्क मसाला 2 चम्मच या फिर बादाम, काजू और अखरोट सब 2-2। फिर हमें चाहिए पिस्ता 5-6 और पानी। इसके साथ हमें चाहिए ढेर सारा प्यार क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस खीर में उतरने वाली हैं। इस साबुदाना खीर की रेसिपी को सुनने से पहले साबुदाना को साफ पानी से 2-3 बार धो लीजिए, फिर उससे एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। उस साबुदाना में 1 कप पानी डालिए। लगभग 4-5 घंटे बाद वो साबुदाना सारा पानी सोख लेगा। पानी सोखने के बाद साबुदाना का आकार 2 गुना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर साबुदाना में गर्म पानी डालकर उसे कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे तो साबुदाना जल्दी नरम हो जाएगा। अगर आपको साबुदाना झटपट इस्तेमाल करना हो तो आप ये नुस्खा अपना सकते हैं। तैयारी तो हमने कर ली, अब सुनते हैं साबुदाना खीर को बनाने की रेसिपी। सबसे पहले आप एक मोटे बेस वाली कढ़ाई में दूध गर्म कीजिए। जब तक दूध गर्म हो रहा है आप एक गाना सुनिए।
1: फूंक फूंक कर चूल्हा अखियन का भयो सत्यानाश, हल्दी देवी बहु है अपनी, श्रीमती मिर्ची अपनी सास। हाँ बोल मेरे दुखिया मन कब तक, ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की, पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज हम

हमार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब।

देखेगी है, है, है बरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी।

0: ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप दूध को गर्म करते समय गैस की आंच को धीमी गति पर रखिए। हाई फ्लेम पर दूध ज्यादा तेजी से उबलेगा और उसके नीचे गिरने के चांसेस भी होते हैं। लो फ्लेम पर रखने से दूध थोड़ा गाढ़ा भी होगा और खीर का टेक्सचर ज्यादा स्मूथ भी होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब दूध में उबाल आए तब उसमें भिगोया हुआ साबुदाना ऐड कीजिए। एक बड़े चम्मच की मदद से साबुदाना को उसमें मिक्स कीजिए। 2 मिनट के बाद सारा साबुदाना खिला खिला दिखने लगेगा। फिर उसमें डालिए चीनी यानी कि शक्कर और ढेर सारा प्यार भी डालिए। क्यों? क्योंकि आपके मन की भावनाएं उसमें उतरेंगी। इस शक्कर को भी उस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कीजिए। अगले 15 से 20 मिनट तक इस मिश्रण को पकने के लिए रख दीजिए। आपको बीच बीच में चम्मच से इसे मिक्स करना है, आई मीन टू से चम्मच से दूध को चलाते रहिए। भाई ऐसा करने से क्या होगा? तो सुनिए, ऐसा करने से साबुदाना कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, अदरवाइज साबुदाना कढ़ाई के बेस पर इकट्ठा होकर चिपक सकता है और ऊपर की सतह पर सिर्फ उबलता हुआ दूध ही दिखेगा। तो इस बात का आप जरा ध्यान रखिए। थोड़ी देर बाद नरम और पारदर्शी साबुदाना, मतलब वो जो साबुदाना है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर उसमें मिलाइए खुशबूदार इलायची पाउडर और साथ में भिगोया हुआ केसर। ऐसा करने से साबुदाना खीर से खुशबू तो आएगी ही, साथ ही केसरिया रंग की झलक भी दिखेगी। अब इस केसरिया खीर को 5 मिनट तक और पकाइए। इससे खीर और ज्यादा गाढ़ी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आप चाहे तो इस खीर में 2 चम्मच बारीक रवा मिलाकर पकाइए। वैसे कोई और टाइप की खीर को बनाते समय भी अगर आपने थोड़ा सा रवा उसमें मिलाया तो खीर का टेस्ट और टेक्सचर ज्यादा निखरता है। ये रवा मिलाकर खीर बनाना वैसे ऑप्शनल है, आपको डिसाइड करना है। अब आप गैस को कर दीजिए बंद, क्योंकि खीर को टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आप भिगोए हुए बादाम को छुरी की मदद से पतले पतले टुकड़ों में काटिए। इस तरह पिस्ता काजू और अखरोट के टुकड़े भी काटिए। ये तैयार हुआ साबुदाना खीर की डेकोरेशन का सामान। इस खीर को डेकोरेट करने से पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।
1: हाल कैसा है जनाब का?
2: क्या ख्याल है आपका?

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। साबुदाना खीर को सजाने का टाइम आ गया बॉस। इसे सजाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक शानदार बोल। उस बोल में बड़ी नजाकत से साबुदाना खीर को निकालिए। अब डेकोरेशन कैसे करना है इस बात पर जरा गौर फरमाइए जनाब। काजू और बादाम के पतले स्लाइस यूज करके हमें बनाने हैं 5 पंखुड़ियों वाले कुछ फूल। अब इन फूलों के इर्द गिर्द आप पिस्ता के टुकड़ों के 3-3 ग्रुप बनाइए। जैसे गणेश जी की पूजा में जो दुर्वा इस्तेमाल करते हैं वो घास के 3 टुकड़ों वाली, हाँ कुछ उसी तरह से आप पिस्ता के टुकड़ों को इस्तेमाल कीजिए। फिर अखरोट के टुकड़े से आप किनारे को सजाइए। ये डेकोरेशन ऐसे दिखेगा जैसे किसी फ्रेम में सफेद फूल और हरे पत्तों से कोई डिजाइन बना हो, है ना इंटरेस्टिंग बात। अब इस फैंसी साबुदाना खीर का भगवान को लगाइए भोग और फिर क्या, इस टेस्टी और हेल्दी साबुदाना खीर का लुफ्त एकदम मजे से उठाइए। इस साबुदाना खीर की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है सुंदर सी साबुदाना खीर। बात हो रही है मिठाई की, नाम है उसका साबुदाना खीर। दूध के संग मोतियों सा साबुदाना, लागे जैसे रांझे संग हो हीर। इसकी मिठास को बढ़ाने डाली हमने शक्कर, स्वाद है इतना अनोखा कि जंक को दे टक्कर। साबुदाना खीर बनाकर मनाओ अधिक मास, क्योंकि आप ही हो ऑडियंस जी हमारे दोस्त एकदम खास। इस खीर को सजाकर हमने रूप दिया सुहाना, स्वाद का जायका निभाना यही है फर्ज हमारा। साबुदाना खीर की सुंदरता बढ़ाने पेश है ये अंदाज, क्योंकि अधिक मास के व्रत का हो गया है आगाज। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। कहते हैं कि अधिक मास के दौरान सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करना उचित है। अब घर का कोई भी सदस्य अगर व्रत करता हो तो उसके लिए खाना अलग से बनता ही है, जिसमें औरों का भी थोड़ा सा हिस्सा होता ही है कि नहीं। वैसे इस अधिक मास के दौरान जरूरतमंदों को अन्नदान भी किया जाता है। इस अन्नदान का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। वैसे भी खाना शेयर करना मीन्स खुशियां बांटना है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली रेसिपी की, जिसका नाम है गोंद कतीरा खीर। गोंद कतीरा खीर गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाली एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है। उबलते हुए गाढ़े दूध में इलायची, पोहा और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं और ठंडा होने के बाद इसमें भीगा हुआ गोंद कतीरा मिलाया जाता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गोंद कतीरा एकदम फायदेमंद इलाज है। वैसे गोंद कतीरा हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। इसे पानी में भिगोकर रखने के बाद ये अपने आकार से कई गुना ज्यादा फूल जाता है। फूलने के बाद ये जेली जैसा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। गोंद कतीरा दिखने में सफेद या हल्के पीले रंग के ट्रांसपेरेंट गुच्छे मींस फ्लेक्स के रूप में आता है। इसे फालूदा, शरबत या नींबू पानी में मिलाकर खाया जाता है, लेकिन हम तो इसे खीर में इस्तेमाल करने वाले हैं। गोंद कतीरा खीर बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: गोंद कतीरा 2 बड़े टुकड़े, पोहा 2 बड़े चम्मच, मिश्री मींस खड़ी साखर स्वादानुसार, यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच मिश्री ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए गुलाब जल 1 चम्मच, मिल्क मसाला 1 बड़ा चम्मच या फिर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, पिस्ता वगैरह, ये सब चाहिए 1 या 2 चम्मच। फिर हमें चाहिए केसर के धागे 7 या 8, दूध 4 कप और कॉमन इंग्रेडिएंट मींस ढेर सारा प्यार इस खीर में आप जरूर मिलाइए। रेसिपी को सुनने से पहले हम थोड़ी तैयारी करते हैं। सबसे पहले गोंद कतीरा को एक कटोरी भर पानी में भिगो कर रखिए। लगभग 5-6 घंटे के लिए इसे अच्छे से भिगोइए। कुछ समय के बाद गोंद कतीरा को जेली जैसा रूप मिलेगा।
उसके बाद क्या करना है? तो भाई उसके बाद एक पैन को कीजिए गरम और लो फ्लेम पर पोहा को अच्छे से भून लीजिए। फिर उस रोस्टेड पोहा को आप ठंडा करने छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट के बाद उस ठंडे पोहा को मिक्सर में घुमाकर उसका पाउडर बना लीजिए। फिर क्या करना है? तो जनाब थोड़े गर्म पानी में बादाम और पिस्ता को 20-25 मिनटों के लिए सोक कीजिए। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सॉफ्ट बन जाए तब छुरी की मदद से उनके पतले स्लाइस बनाइए। अब चलिए गोंद कतीरा खीर को बनाते कैसे हैं ये हम सुनते हैं। सबसे पहले एक मोटे बेस वाले पैन में दूध गर्म करने रख दीजिए। दूध को लो फ्लेम मतलब धीमी आंच पर ही उबालें, नहीं तो दूध में ज्यादा उबाल आ सकता है और वो वेस्ट हो सकता है। लगभग 1 घंटे के बाद दूध गाढ़ा बन जाएगा। इस दौरान आप दूध को चलाते रहिए, बीच बीच में दूध को चम्मच से मिक्स कीजिए। जब दूध उबलकर आधा मतलब गाढ़ा हो जाएगा तब उसमें डालिए मिश्री मींस खड़ी साखर, इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें ऐड कीजिए भिगोया हुआ गोंद कतीरा। फाइनली केसर के धागे और थोड़ा सा गुलाब जल भी डालिए। इससे गोंद कतीरा खीर को केसरिया रंग और गुलाब जल की खुशबू मिलेगी। इसे भी आपको अच्छे से मिक्स करना है। अब गैस को कीजिए बंद और इंतजार कीजिए कुछ लम्हे चंद। जब तक इस खीर में गुलाब जल और केसर की खुशबू घुल जाए तब तक आप एक गाना सुनिए।

0: थे हम अकेले
1: जालम साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के
1: अंदर है तो याद करोगे।
2: वेलकम बैक टू स्वाद का जायका, मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। अब इस गोंद कतीरा को डेकोरेट करते हैं। बादाम और पिस्ता के पतले स्लाइस तो हमने तैयार रखे ही हैं। अब एक स्लाइस बादाम का और एक स्लाइस पिस्ता का, ऐसा अरेंज करके आप इस खीर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक सुंदर सा सर्विंग बोल लीजिए, उसमें गोंद कतीरा खीर को डालिए, फिर एक नजाकत से बादाम और पिस्ता का डिजाइन बनाइए। बाद में क्या करना है तो भाई, इस गोंद कतीरा खीर का लुत्फ उठाना है। इस गोंद कतीरा खीर के लिए पेश है एक कविता। कविता का नाम है गोंद कतीरा का फंडा। गर्मी के सीजन में जब शरीर को रखना हो ठंडा, तब आप जरूर आजमाएं गोंद कतीरा का फंडा। इसके सेवन से आप पाएंगे राहत और मिठाई खाने की पूरी होगी चाहत। घर में ही मिलेगा गर्मी का इलाज, फिर उसमें मिलाए कुछ देसी अनाज। हर बात पर क्यों अपनाना तुम्हें।

अंग्रेजीपन, देसी चीजों से झलकेगा कलाकारी दिखाने का फन। जनाब हमारे आयुर्वेद में है बेमिसाल सी ताकत, नौ देसी नुस्खे और गर्मी से पाओ राहत। खाने पर होते हैं तरह तरह के संस्कार, तब जाकर बनते हैं खट्टे मीठे पकवान। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं गोंद कतीरा बनता कैसे है? पौधे के तनों या छाल में कोई कट या प्राकृतिक दरार आने पर गोंद निकलता है। जब ये गोंद हवा के संपर्क में आता है तब ये सूख जाता है। सूखने के बाद ये हल्के पीले या सफेद गुच्छे के रूप में इकट्ठा होता है। ओरिजिनली ये मिडिल ईस्ट इलाके से बिलोंग करता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन इलाकों में ये आसानी से पाया और उगाया जाता है। अपनी ब्यूटी रेजिम में आप गोंद कतीरा को जरूर शामिल कीजिए। ग्लोइंग स्किन के लिए गोंद कतीरा काफी फायदेमंद है। वैसे आप ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कौन सा नुस्खा अपनाते हैं? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। कहते हैं कि खाने से ही शरीर बिगड़ता है और खाने से ही सुधरता भी है। हमारे भारतीय खाने में इतनी शक्ति है कि अगर हम पुराने जमाने वाली खान पान शैली को अपनाएं तो हमारी सेहत अपने आप अच्छी बनेगी। आए दिन बेकरी प्रोडक्ट्स, चिप्स, इंस्टेंट और रेडीमेड खाना खा खा कर हमने अपनी सेहत से खिलवाड़ किया है कि नहीं? अब आप अधिक मास मीन्स पुरुषोत्तम मास की बात को ही ले लीजिए। अधिक मास में उपवास मीन्स व्रत रखने के बावजूद भी हम पारंपरिक और होममेड खाना खाकर अपनी सेहत का ख्याल रख ही सकते हैं। कढ़ाई में ढेर सारा तेल गरम करके उसमें पकाया हुआ खाना बार बार खाते रहना कितना सही है। इसलिए आज हमने हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए उपवास स्पेशल साबुदाना खीर बनाई। इस खीर को खाकर आप व्रत और अपनी सेहत दोनों में एक तालमेल बना ही सकते हैं। हमारे नन्हे दोस्त मीन्स बच्चा पार्टी जो दूध पीने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं वो भी खीर को मजे से एंजॉय करेंगे। आइसक्रीम खाकर ठंडक पाने की बजाय देसी तरीका अपनाना बेहतर है। इसके लिए हमने आपसे गोंद कतीरा खीर की रेसिपी को शेयर किया। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। स्वाद का जायका, स्वाद के जायके से मुझको लुभाती हो तुम, लजीज खाने से दिल पर वार करती हो तुम। मैं कितनी भी कोशिश करूं पर आचार्य 90 FM पर हमेशा मिलती हो तुम। हर सोमवार और शुक्रवार मिलने का ये वादा, आरजे भारती सीमा कभी ना बदलेगी इरादा। खाने और खिलाने की चलती रहे कश्मकश, साथ ही कुछ चुनिंदे फिल्मी तरानों की पेशकश। ऑडियंस की सेहत का रखना है ख्याल, देसी खाना खिलाकर पूछो सबका हाल। अरे भाई फिकर नॉट, अगली बार भी कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज मैं तो ले ही आऊंगी, लेकिन अब मुझे दीजिए इजाजत। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका दोस्त होस्ट आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। हम लेके आए हैं आज एक ट्रैवल से भरी हुई कहानी। तो देखिए सफर का आगाज शुरू करते हैं। मुंबई सेंट्रल से निकली कोणार्क एक्सप्रेस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। प्लेटफॉर्म पे चाय वालों की आवाज, कुली की भागदौड़ और बिछड़ने वालों के आंसू सब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। ट्रेन के S5 कोच में ऑलरेडी हंगामा शुरू हो चुका था। भाई साहब ये मेरी लोअर बर्थ है, एक तेज आवाज पूरे कंपार्टमेंट में गूंजी। एक आदमी अराउंड 45 साल का फॉर्मल शर्ट पहने हुए थोड़ा सा गुस्से में खड़ा था। नाम था राजीव मल्होत्रा। उसके सामने खड़ा था एक यंग लड़का, बियर्ड, हेडफोन्स, बैकपैक और आंखों में थोड़ी सी अकड़। नाम अमन शेख। अमन ने टिकट दिखाते हुए कहा, सर मुझे पता है लोअर आपकी है पर मेरी ऊपर है और मुझे वर्टिगो है, मैं ऊपर सो नहीं पाऊंगा। राजीव ने हाथ उठा दिया। भाई मुझे भी प्रॉब्लम है, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है नागपुर में, मैं पूरे दिन ऑफिस करके आ रहा हूँ, मुझे नीचे ही सोना है। अमन का टोन और गर्म हो चुका था। तो मैं क्या मजाक के लिए पूछ रहा हूँ आपसे? तब तक आसपास के पैसेंजर्स उन्हें देखने लग गए। एक आंटी ने अपने हस्बैंड को धीरे से कहा, हर ट्रेन में एक महाभारत तो जरूर होती है। ऊपर बर्थ पे बैठे 5 दोस्त हंसी रोक रहे थे। उनका नाम था कबीर, फैजान, रोहित, नीलेश और चिंटू। पांचों गोवा ट्रिप से लौट रहे थे और ऑलरेडी कंपार्टमेंट को पिकनिक स्पॉट बना चुके थे। कबीर ने धीरे से बोला, भाई लोअर बर्थ देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू है। सब हंस दिए पर नीचे माहौल और खराब हो रहा था। राजीव ने फाइनली गुस्से में कहा, देखो यंग मैन, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, जो सीट है उसी पे जाओ। अमन का पेशेंस टूट चुका था। सर आप जैसे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको लगता है एज ज्यादा हो गई तो दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? पूरे कोच में साइलेंस छा गया। राजीव की आंखें गुस्से से भर गई। माइंड योर लैंग्वेज। इसी बीच साइड लोअर पे बैठे एक लड़की ने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा। यार अर्जुन

अमन ने फ्रस्ट्रेशन में बैग ऊपर बर्थ पे पटक दी और बिना कुछ बोले ऊपर बर्थ पर चला गया। राजीव भी नीचे बैठ गया, लेकिन दोनों के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था। ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे उन सबके जिंदगी के सबसे अजीब सफर बनने वाले हैं। रात को अराउंड 11 बजे सब थोड़ा सेटल हो चुके थे। कबीर और उसके फ्रेंड्स अंताक्षरी खेल रहे थे। अरे भाई चुप हो जाओ, किसी पैसेंजर ने चिल्लाया। कबीर ने तुरंत हाथ जोड़ दिया, सॉरी अंकल लास्ट गाना। और फिर वो जोर जोर से गाने लगे, हम्मा हम्मा हम्मा। पूरा ग्रुप फट के हंस पड़ा। दूसरी तरफ मीरा खिड़की के पास बैठी थी। उसने धीरे से अर्जुन से पूछा, तुमने हनीमून के लिए ट्रेन ही क्यों चूज की? अर्जुन मुस्कुरा दिया, क्योंकि फ्लाइट में सफर खत्म हो जाता है, ट्रेन में यादें बनती हैं। मीरा ने आंखें घुमाई और कहा, इंस्टाग्राम कोट कम मारा करो। दोनों हल्के से मुस्कुराए। ऊपर बर्थ पे अमन हेडफोन्स लगा के लेटे हुए अभी भी सो नहीं पा रहा था। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। नीचे राजीव लैपटॉप खोलकर प्रेजेंटेशन देख रहा था। कभी कभी दोनों की नजर मिलती, फिर दोनों साइड में देखते। ट्रेन रात को जंगल एरिया क्रॉस कर रही थी। बाहर अंधेरा था, अंदर ट्यूबलाइट की हल्की पीली रोशनी थी। एक अजीब सुकून भी था और थोड़ी सी बेचैनी भी। सुबह 4 बजे अचानक ट्रेन को जोर से झटका खाकर रुक गई। पूरे कोच में हलचल मच गई। क्या हुआ, कोई स्टेशन आया क्या? क्यों रुक गई ट्रेन? लोग उठने लगे। विंडो से बाहर देखा तो ना स्टेशन ना सिटी, सिर्फ एक छोटा सा गांव और दूर तक सिर्फ जंगल। थोड़ी देर बाद न्यूज आई, इंजन में टेक्निकल प्रॉब्लम है, रिप्लेसमेंट इंजन आने 10 घंटे लग सकते हैं। व्हाट? पूरे कोच में आवाज गूंजी। क्या मतलब 10 घंटे? क्या रेलवे मजाक है? खाना कहाँ मिलेगा? नेटवर्क भी वीक था। ट्रेन एक सुनसान जगह पे अटकी हुई थी और वहीं से शुरू हुआ असली सफर।

स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद आचार्य 90 FM में। हम सुन रहे थे ट्रेन की एक दास्तां, एक ऐसी कहानी जो अब ट्रेन को रोक चुकी है और देखेंगे इस रुकी हुई ट्रेन में क्या क्या हादसे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह का सूरज चढ़ रहा था, सब पैसेंजर फ्रस्ट्रेटेड थे। राजीव की मीटिंग मिस होने वाली थी, अमन का इंपॉर्टेंट एग्जाम था, दोनों ऑलरेडी इरिटेटेड थे। चाय वाला भी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं। राजीव ने फाइनली इरिटेशन में कहा, इंडियन रेलवे कभी नहीं सुधरेगी। ऊपर बत से अमन बोला, सर रेलवे को गाली देने से इंजन स्टार्ट नहीं होगा। राजीव ने सार्केस्टिकली कहा, हाँ तुम इंजीनियर हो ना, सर एटलीस्ट ब्लेम गेम तो नहीं खेल रहा, अमन ने कहा। राजीव उठ गया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अमन भी नीचे उतर आया, प्रॉब्लम आप हो, एटमॉस्फेयर फिर गर्म। पर तभी ट्रेन के बाहर से आवाज आई, कोई डॉक्टर है क्या? सब भागकर गेट की तरफ गए। एक एल्डरली अंकल को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, पैनिक मच गया। राजीव तुरंत आगे बढ़ा, साइड हो जाइए। उसने अपने बैग से मेडिसिन निकाली, अमन हैरान रह गया। सर आप डॉक्टर हो? राजीव ने ऑक्सीजन स्प्रे यूज करते हुए कहा, कार्डियोलॉजिस्ट। अमन चुप हो गया। थोड़ी देर में अंकल स्टेबल हो गए। सबने राजीव को थैंक यू बोला। अमन थोड़ा गिल्ट फील करने लगा। बाद में वो क्वाइटली राजीव के पास आया, सॉरी सर मुझे लगा आप बस एरोगेंट हो। राजीव हल्का सा हंस दिया, और मुझे लगा तुम बस बदतमीज हो, दोनों पहली बार मुस्कुराए। फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। पता चला अमन मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट था, उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी मदर के साथ रहता था। राजीव ने पूछा, वर्टिको वाली बात सच थी? अमन ने हंसी रोक के कहा, 50%। राजीव जोर से हंस पड़ा, पहली बार। फिर राजीव ने कन्फेस किया, मैं एक्चुअली मीटिंग से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अमन चुप रहा। राजीव धीरे से बोला, मेरी वाइफ और बेटा दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, 3 महीने से प्रॉपरली बात नहीं हुई है। अमन ने पूछा, फाइट? राजीव ने सर झुका दिया, काम। थोड़ी देर साइलेंस रहा, फिर अमन ने स्लोली कहा, मेरे अब्बू भी काम में बिजी रहते थे, एक दिन अचानक चले गए और हमारे पास सिर्फ उनकी मिस कॉल्स रह गई। राजीव की आंखें भर गई, उसने पहली बार अपना फोन निकाला और वाइफ को मैसेज टाइप किया, आई मिस यू। नेटवर्क वीक था, मैसेज पेंडिंग, पर शायद इमोशंस डिलीवर हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर 10 घंटे के हॉल्ट में मीरा परेशान हो चुकी थी। वो 10 घंटे का हॉल्ट मानो मीरा के लिए नाइटमेयर बन चुका था। वॉशरूम डर्टी, हीट अनबेरेबल, नेटवर्क गॉन और ऊपर से भूख। अर्जुन मुझे घर जाना है, वो ऑलमोस्ट रो पड़ी। अर्जुन ने समझाया, बस थोड़ा और वेट करते हैं, तुम्हारे लिए इजी है, तुम तो हर सिचुएशन में चिल रहते हो। अर्जुन चुप हो गया, मीरा और हाइपर हो गई।

मीरा और इरिटेट हो गई। अब कहाँ चले गए? एक घंटा बीत गया, हीट और बढ़ गई, मीरा परेशान। फाइनली दूर से अर्जुन दिखाई दिया, पूरा पसीने में भीगा हुआ, हाथ में एक प्लास्टिक बैग। मीरा ने गुस्से में पूछा, कहाँ थे तुम? अर्जुन ने बैग खोला, उसमें कोल्ड वाटर बॉटल्स थी, ग्लूकोज बिस्किट्स थे और एक छोटा सा गुलाब। गांव तक गया था, उसने स्माइल के साथ कहा। तुम्हें डिहाइड्रेशन हो रही थी। मीरा स्टन्ड, तुम इतने दूर क्यों गए? हाँ, और वहाँ एक अंकल के गार्डन से ये फूल चुरा के लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। मीरा हंसी रोक ना पाई। अर्जुन ने उसके लिए सीट क्लीन की, बॉटल्स दी और क्वाइटली उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद मीरा ने कहा, सॉरी। अर्जुन ने पूछा, किस लिए? ओवर रिएक्ट करने के लिए। अर्जुन मुस्कुरा दिया, शादी में ओवर रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, ट्रेन स्टिल खड़ी थी। मीरा खिड़की के पास बैठी बारिश देख रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, पता है मुझे लग रहा था तुम रिग्रेट करोगी। शादी? हाँ। मीरा ने उसके शोल्डर पर सर रख दिया, पागल हो गया? हाँ बस थोड़ा सा पागल हूँ, मीरा ने स्माइल करते हुए कहा। ट्रेन रुक गई है अर्जुन, पर शायद हम थोड़ा और क्लोज हो गए। और वो पहली बार उसके कांधे पे सो गई।

वेलकम दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आचार्य 90 FM में। जैसे कि हमने सुना, ट्रेन रुक चुकी है बहुत समय से और तरह तरह के लोग हैं ट्रेन में। जैसे डॉक्टर राजीव और अमन, एक डॉक्टर एक मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में जो नोकझोंक शुरू हुई थी अभी ट्रेन रुक जाने से, कहीं ना कहीं आके वो नोकझोंक खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर एक न्यूली मैरिड कपल अर्जुन और मीरा, जो हनीमून ट्रिप के लिए बाहर जा रहे थे पर शायद उनकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था, तो वो भी अपनी डेस्टिनेशन ना पहुंचकर एक सफर में ही इतने क्लोज आ गए जो शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि डेस्टिनेशन में भी इतने क्लोज आ पाएंगे। तो ये दो कहानियां तो मुझे लगता है आपको सुन के मजा ही आया होगा, पर कहानी का अभी तीसरा भाग तो पेंडिंग है। तो चलते हैं कहानी के तीसरी स्टोरी। कबीर और उसका गैंग इनिशियली फुल मस्ती मूड में था, पर धीरे धीरे बोर्डम शुरू हो गया। नेटवर्क नहीं, म्यूजिक बैटरी डेड, ट्रेन स्टॉप। चिंटू ने कहा, भाई अगर और 10 मिनट यहाँ रहा मैं तो साधु बन जाऊंगा। नीलेश सडनली क्वाइट हो गया। कबीर ने नोटिस किया, क्या हुआ? नीलेश स्लोली बोला, गाइज एक बात बोलो, सब सीरियस हो गया, मैं कनाडा शिफ्ट हो रहा हूं। साइलेंस। व्हाट? नेक्स्ट मंथ। सब शॉक थे। फैजल ने फेक स्माइल दी, अच्छा जोक था। जोक नहीं है, सडनली उन पांचों की मस्ती हल्की पड़ गई। ट्रेन के हॉल्ट ने उनको एक जगह रोक दिया था और शायद पहली बार लाइफ में भी वो हॉल्ट हो चुके थे। कबीर ने स्लोली पूछा, बताया क्यों नहीं? नीलेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, डर लग रहा था यार, तुम लोग मेरे बिना एडजस्ट कर लोगे ना, पर शायद मैं तुम लोगों के बिना एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। साइलेंस। चिंटू की आंखें भर गई, साले इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। फिर धीरे धीरे बातें खुलने लगी, कैसे स्कूल बंक किया, कैसे एक ही लड़की पे सबके क्रश हुआ करते थे, कैसे फैजान फेल हुआ था, कैसे कबीर सीक्रेटली सिंगर बनना चाहता था। आर्स बीतने लगे। एक पॉइंट पे उन्होंने पूरे कोच के बच्चों के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज किए, अंताक्षरी, स्टोरी टेलिंग, इवन राजीव और अमन भी ज्वाइन कर गए। पूरा कंपार्टमेंट एक फैमिली बन चुका था। एक ओल्ड अंकल ने हारमोनियम निकाला जो वो कैरी कर रहे थे। कबीर ने गाना स्टार्ट किया, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, और पूरा कुछ साथ में गाना गाने लगा। ट्रेन स्टिल स्टक थी, पर किसी को जल्दी नहीं थी। रात होने लगी थी, इंजन अभी तक नहीं आया था। आउटसाइड बारिश होने लगी थी, अंदर इमोशंस की बारिश लगी थी। अचानक से एक छोटी सी लड़की मिसिंग हुई, पूरा कोच पैनिक। उसकी माँ रो रही थी, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। सब पैसेंजर्स सर्च करने में लग गए। अमन और राजीव टॉर्च लेकर बाहर निकले, कबीर और उसके फ्रेंड्स दूसरी साइड गए। फाइनली चिंटू को लड़की ट्रेन के पीछे ट्रक्स के पास खड़ी मिली। वो एक पपी के साथ खेल रही थी। सबने चैन की सांस ली। उसकी मां ने उसे गले लगा दिया। उस मोमेंट पे पूरे कोच को और क्लोज कर दिया। राजीव ने अमन के शोल्डर पे हाथ रख दिया, गुड जॉब पार्टनर। अमन मुस्कुरा दिया। मीरा
क्वाइटली अर्जुन को देख रही थी। कबीर अपने दोस्तों को, सब बदल रहे थे। रात के 1 बजे फाइनली रिप्लेसमेंट इंजन आया। पूरे कोच में क्लैप्स गूंजने लगी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। सबको अजीब सा फील हुआ, जैसे कोई चैप्टर खत्म होने जा रहा हो। राजीव ने अमन को अपना कार्ड दिया, इंटर्नशिप चाहिए हो तो कॉल करना। अमन स्माइल्ड, लोअर बर्थ वाले अंकल थैंक यू। राजीव हंस पड़ा। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ था टाइटली। कबीर और उसके फ्रेंड्स गेट पे खड़े हवा फील कर रहे थे। नीलेश धीरे से बोला, यार लाइफ भी ट्रेन जैसी होती है ना। कबीर ने पूछा, कैसे? कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग होते हैं जो सफर में मिलते हैं। सब चुप हो गए। ट्रेन डार्कनेस चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और उन 10 घंटों ने स्ट्रेंजर्स को कहानी बना दिया। 2 महीने बाद राजीव दिल्ली गया। उसने फाइनली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। अमन को उसके हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल गई। मीरा और अर्जुन अब भी कभी कभी उस ट्रेन जर्नी पे हंसते हैं। मीरा के फोन में अब भी वो सूखा हुआ गुलाब रखा हुआ है। और 5 दोस्त, नीलेश कनाडा चला गया पर हर संडे वीडियो कॉल होती है, उसका नाम रखा गया है S5 कोच मीटिंग। कबीर अब भी गाता है और जब भी वो मुसाफिर हो यारो गाता है, उसे वो 10 घंटे याद आते हैं। वो ट्रेन, वो बारिश, वो फाइट्स, वो हंसी और वो लोग जो सिर्फ एक सफर के लिए मिले थे पर जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर एक दिन एक सफर की तरह होता है। एक ऐसा सफर जिसकी हमने कभी कल्पना की नहीं होती है। सफर के लिए जरूरी नहीं कि हम ट्रेन के सफर पे निकल पड़े या किसी कार के सफर पे निकल पड़े या बाइक राइड के लिए निकल पड़े। कभी कभी समंदर किनारे चलते हुए भी एक ऐसा सफर हम काट लेते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। कभी कभी बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट हमें जिंदगी का बहुत बड़ा मतलब सिखा जाते हैं। और ये कहानी से हमें यही पता चलता है कि भले जिंदगी कैसे भी शुरू क्यों ना हुई हो, पर आखिर में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि अपने दिल में कभी किसी के लिए बुरा ना रखे। भले कितने भी मतभेद क्यों ना हो, मनभेद ना हो, चाहे फिर वो दोस्ती हो, प्यार हो या फिर किसी स्ट्रेंजर से मुलाकात। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ आचार्य 90 FM पर कहानियों के गुल्लक में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आप सभी से अलविदा कहता हूँ। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानियों को सुनते रहिए, कहानियों को बुनते रहिए और नए नए मस्त मस्त गानों को सुनते रहिए।

कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यह जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। आप सुन रहे हैं स्वाद का जायका और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। आप ली केमो ना चैन भाई, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही हैं, क्योंकि आप आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त हैं और हमारी इस दोस्ती को निभाने हम वापस आ गए हैं। आज हम बच्चा पार्टी स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं और इस यमी रेसिपी का नाम है इंस्टेंट दही वड़ा। दही वड़ा ये भारत का एक बहुत पुराना और पारंपरिक व्यंजन है। दही वड़ा की खोज अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ष पहले हुई थी। हमारे पंजाब में इसे दही भल्ला के नाम से जानते हैं। ओडिशा और बंगाल में दही वड़ा को दही बोरा इस नाम से जाना जाता है और साउथ इंडियन दोस्त इसे थाईरू वड़ी कहकर पुकारते हैं। एंटायर साउथ एशिया में दही वड़ा एक फेमस चाट आइटम है और गर्मी के सीजन में दही वड़ा खाने से थोड़ी ठंडक तो मिलती ही है। ट्रेडिशनल दही वड़ा रेसिपी को अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। वैसे होली के त्योहार पर दही वड़ा बनाना कॉमन बात है, लेकिन हमारे नन्हे ऑडियंस के लिए हम इसे गर्मी के सीजन में इंस्टेंट तरीके से बना रहे हैं। हमारी आज की इंस्टेंट दही वड़ा रेसिपी ऑलमोस्ट 90% नॉन फायर टाइप की है। मैं तो कहती हूँ कि घर के बच्चे इसे जरूर बनाएं। तो चलिए अब हम इंस्टेंट दही वड़ा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। इंस्टेंट दही वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कड़क जीरा बटर 10 या 12, गरम पानी 4 बड़ी कटोरी, शक्कर 5 चम्मच, हरी चटनी मींस पुदीना चटनी 5-6 चम्मच, इमली की चटनी 5-6 चम्मच, चाट मसाला 1/2 या 1 चम्मच, दही 4 कटोरी, कोथमीर गार्निश के लिए, खारी बूंदी 4 चम्मच, ये ऑप्शनल है, और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस दही वड़ा में जरूर उतरेंगी। चलिए अब हम इंस्टेंट दही वड़ा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले गर्म पानी में सारे जीरा बटर को 10 मिनट के लिए डुबाकर रख दीजिए। लगभग 10-15 मिनट के बाद उन जीरा बटर को पानी से बाहर निकालिए। फिर हर एक जीरा बटर को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे निचोड़ लीजिए। इससे क्या होगा कि बटर के अंदर का एक्स्ट्रा पानी तो निकलेगा ही और वो सॉफ्ट बनेंगे। अब एक बड़ी सी कटोरी में जीरा बटर को फैलाकर रखिए। फिर हर जीरा बटर पर इमली की चटनी और पुदीने की चटनी को लगाइए। फिर दही में शक्कर मिक्स कीजिए। इस मीठे दही को सारे जीरा बटर पर अच्छे से फैलाइए। फिर उस पर थोड़ा चाट मसाला छिड़क दीजिए। फाइनली बारीक कटी कोथमीर और खारी बूंदी से इंस्टेंट दही वड़ा को गार्निश कीजिए। अगर आप चाहें तो खारी बूंदी के बदले थोड़े से अनार के दाने यूज कर सकते हैं। अब इस यमी और इंस्टेंट दही वड़ा की खूबसूरत छवि को अपने मोबाइल कैमरा से कैप्चर कीजिए। फिर अपनों के साथ मिलकर दही वड़ा एंजॉय कीजिए। कुछ लोगों को ठंडा दही वड़ा खाना पसंद है, तो उसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रखिए और फिर खाइए। वैसे मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो ताजा बनाया हुआ दही वड़ा खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। वैसे वो कौन सा खाना है जिसे ठंडा करके खाने की बजाय आप ताजा ताजा खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस दही वड़ा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है छोटा सा दही बड़ा। जब मैं देखूं दही वड़ा, चंचल मन मेरा जाता लड़खड़ा। दही और वड़ा का हुआ सलोखा, तब निखर आता है स्वाद अनोखा। साथ देने चटनी पुदीना और इमली, और प्यारा लगे दही वड़ा मखमली। एक दिन के लिए डाइट होगा साइड, और दही वड़ा को करूंगी अपने पेट में हाइड। थोड़े टाइम के लिए मैं जाऊं सब कुछ भूल, दही वड़ा का टेस्ट होता ही है ब्यूटीफुल। जब सामने होता है ऐसा टेस्टी खाना, तब बजना ही चाहिए आचार्य 90 FM पर गाना।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आजय भारतीय सीमा। वैसे दही बड़ा खाकर और खिलाकर आपको अद्भुत प्रकार का आनंद तो मिलेगा ही, क्योंकि ये होता ही है इतना टेम्प्टिंग कि कोई इसे मना ही नहीं कर सकता। इमली का खट्टापन और पुदीने का रिफ्रेशिंग टेस्ट, ये तो मुंह में घुलते ही आप गर्मी को भूल ही जाओगे। और जब छोटे बच्चे अपने हाथों से इसे बनाकर सर्व करेंगे तो सबको खाना ही पड़ेगा। वैसे ओरिजिनल दही बड़ा रेसिपी में उड़द दाल को भिगोकर उसे पीसकर उसमें कुछ मसाले वगैरह डालकर गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाता है, लेकिन हमारे नन्हे ऑडियंस के लिए हमने इसे आसान तरीके से बनाया है। बड़ों के हाथ का खाना तो हम सब हर रोज खाते ही हैं। कभी कभी बच्चों को भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का चांस मिलना चाहिए। कुकिंग जैसी बेसिक लाइफ स्किल्स को बच्चे जरूर सीखें और रेगुलरली इम्प्लीमेंट भी करें। कुकिंग सीखना कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। कुकिंग से आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटी डेवलप होती है, साथ ही भोजन के प्रति आपके मन में आदर भावना जागती है। खाना बनाना मेहनत का काम होता है, इस बात को बच्चे इस प्रैक्टिकल मेथड से सीख पाएंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे और भी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारती सिंह। हम बात कर रहे थे बच्चों को लाइफ स्किल सिखाने की और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक और रेसिपी की जानकारी सुनते हैं। हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की ऐसी रेसिपी जिसका ओरिजिन महाराष्ट्र और गुजरात से ताल्लुक रखता है। इसे दही से बनाया जाता है और त्योहारों में खास तौर पर इसे खाया और खिलाया जाता है। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसे खाने से गर्मियों में शरीर में कुछ थोड़ी सी ठंडक भी मिल जाती है और छोटे बच्चे अगर इसे अपने हाथों से बनाएं तो इसकी मिठास दुगनी होगी और इसे एक मिठास टच मिलेगा। तो पेश है हमारी अगली रेसिपी जिसका नाम है फ्रूट श्रीखंड। फ्रूट श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हंग कर्ड मींस चक्का आधा किलो, पीसी हुई शक्कर 250 ग्राम मींस पाव किलो शक्कर ले लीजिए, केसर 7 या 8 धागे, सीजनल फ्रूट्स जैसे केला आधा बारीक कटकर, एप्पल आधा बारीक कटकर, अनार 2 चम्मच, बारीक कटा हुआ मैंगो आधा, ग्रेप्स 5-6 इन्हें भी बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। फिर हमें चाहिए मिल्क मसाला या चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स 2 चम्मच। फिर लीजिए इलायची पाउडर 2 चुटकी, जायफल पाउडर 2 चुटकी, दैट्स इट। अब हम फ्रूट श्रीखंड बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले 2 कप गर्म पानी लीजिए, उसमें 50 ग्राम शक्कर को मिक्स कीजिए। अब सारे फ्रूट्स को इस चाशनी में डुबाकर आधे घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। ऐसा करने से उन फ्रूट्स में से खट्टापन निकल जाएगा और सारे फ्रूट्स में शक्कर की मिठास घुल जाएगी। अब चक्का मींस हंग कर्ड में बाकी 200 ग्राम शक्कर को अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे मिक्स करने में टाइम लगता है क्योंकि हंग कर्ड थोड़ा गाढ़ा सा होता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 मिनट के लिए हंग कर्ड और शुगर को चम्मच से हिलाते रहिए। फिर इसमें शुगर सिरप वाले चॉप्ड फ्रूट्स के पीसेस डालिए। हमें चाशनी नहीं लेनी है, सिर्फ फ्रूट्स के टुकड़े ही लेने हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को भी इस फ्रूट श्रीखंड में मिक्स कीजिए। फाइनली केसर और ड्राई फ्रूट्स से फ्रूट श्रीखंड को डेकोरेट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको हमेशा वाली एक टिप देना चाहती हूँ, इस श्रीखंड को कांच के बर्तन में ही रखिए क्योंकि खट्टी चीजों को मेटल के बर्तन में रखने से मेटल की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। अब इस तैयार फ्रूट श्रीखंड का भोग भगवान को लगाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि खाने की सात्विकता बढ़ जाएगी। फिर अपनों के साथ आराम से बैठकर इस फ्रूट श्रीखंड का लुत्फ़ उठाइए। वैसे आपने लास्ट टाइम श्रीखंड के साथ पूरी कब खाई थी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि 12th century में श्रीखंड को शिखरिणी नाम से जाना जाता था। शिखरिणी मीन्स गाढ़ा या लटका हुआ दही, इन शॉर्ट हंग कर्ड। अब हम श्रीखंड के इन्वेंशन मीन्स श्रीखंड की खोज की स्टोरी सुनते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार श्रीखंड का इन्वेंशन घुमंतु चरवाहों ने किया था। घुमंतु चरवाहे मींस ऐसे लोग जो गाय बकरी वगैरह साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। रात भर के सफर के दौरान दही को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाने के लिए उन चरवाहों ने दही को एक साफ कपड़े में बांधा, क्योंकि बर्तन में दही ले जाने से सुबह तक वो दही खट्टा बन जाता था। रात भर दही को कपड़े में बांधने से सुबह तक उस दही में से सारा पानी निकल जाता था और कपड़े में बाकी रहता था हंग कर्ड, जिसे चक्का कहते हैं। फिर उसमें शक्कर और इलायची जायफल जैसी चीजें मिलाकर बना हम सबका फेवरेट श्रीखंड। वैसे सादा श्रीखंड, केसर इलायची श्रीखंड, पिस्ता बादाम श्रीखंड, ये ट्रेडिशनल फ्लेवर्स तो है ही। स्ट्रॉबेरी, लीची, ब्लैक करंट और मैंगो मींस आम्रखंड, ये फ्रूट बेस्ड फ्लेवर्स भी हैं। श्रीखंड के इनोवेटिव फ्लेवर्स में चॉकलेट, पान, राजभोग और अमेरिकन नट्स शामिल हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे महाराष्ट्र के नासिक शहर की एक दुकान में 40 जायकों का श्रीखंड मिलता है। कैन यू इमेजिन 40 टाइप्स ऑफ श्रीखंड। द श्रीखंड स्टूडियो नाम से फेमस इस दुकान में
280 to 600 रुपीस पर केजी के भाव से अलग अलग फ्लेवर्स वाले श्रीखंड मिलते हैं और इन श्रीखंड फ्लेवर्स के नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं कौन बनेगा श्रीखंड पति। अब हम नासिक शहर में मिलने वाले श्रीखंड के फ्लेवर्स के कुछ नाम सुनते हैं। केसर राजभोग श्रीखंड, अमेरिकन नट श्रीखंड, चोको आलमंड श्रीखंड, ब्राउनी श्रीखंड, पंचरत्न श्रीखंड, बटरस्कॉच श्रीखंड, रजवाड़ी श्रीखंड, नवरत्न नट श्रीखंड, अफगान ड्राई फ्रूट श्रीखंड, मावा बादाम श्रीखंड, केसर किंग श्रीखंड। अब ये सुनिए, ट्रैफिक जैम श्रीखंड, ये भी कभी होता है? भाई होता है। काजू अंगूर श्रीखंड, शाही अंजीर श्रीखंड, पाइनएप्पल श्रीखंड, शाही गुलकंद श्रीखंड, पेरीफेरी श्रीखंड, स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, ब्लूबेरी श्रीखंड, सीताफल श्रीखंड, मिक्स फ्रूट श्रीखंड, क्लासिक इलायची श्रीखंड, मैंगो श्रीखंड, मर चॉकलेट श्रीखंड, काजू श्रीखंड, क्रीम श्रीखंड, चॉकलेट एंड कुकी श्रीखंड, बैंगनी श्रीखंड, पेरू मीन्स अमृत श्रीखंड, संतरा श्रीखंड, अब ये सुनिए, नींबू श्रीखंड, चॉकलेट एंड नट श्रीखंड, कॉफी क्रम्बल श्रीखंड, ड्राई फ्रूट्स वेनिला श्रीखंड, जेरी श्रीखंड और फाइनली मिर्च श्रीखंड, मतलब मिर्ची के फ्लेवर का श्रीखंड। हाश, मैं तो थक गई भाई साहब, इतने सारे फ्लेवर्स को ट्राई करने मुझे 15-20 दिन तो जरूर लगेंगे। आई नीड अ ब्रेक। आप कहीं भी मत जाइए, हम और आप और भी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी अगली रेसिपी भी बच्चा पार्टी स्पेशल रेसिपी है, फ्रूट सैंडविच। ये वाली रेसिपी भी नॉन फायर रेसिपी है, जिसे हमारे नन्हे ऑडियंस एकदम आसानी से बना सकते हैं। भाई बच्चों को भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का चांस मिलना चाहिए, तभी तो वो फ्यूचर में किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज में अपना पार्टिसिपेशन देंगे। वैसे फ्रूट्स खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा ही होता है, और फ्रूट्स का फॉर्म चेंज करके उसे इंटरेस्टिंग स्टाइल से पेश करें तो उसे खाने में ज्यादा मजा आता है। वैसे फ्रूट सैलेड, मिक्स फ्रूट जूस, ये तो कॉमन है। एक्चुअली सैंडविच है तो वेस्टर्न स्टाइल का खाना, लेकिन आचार्य 90 FM के नन्हे ऑडियंस के लिए हम इसे इंडियन स्टाइल से बना रहे हैं, और छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर हम इसे ज्यादा से ज्यादा हेल्दी तरीके से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम फ्रूट सैंडविच बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। फ्रूट सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, व्हाइट, ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइस 4, मिक्स फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, कीवी, इनके बारीक टुकड़े अप्रोक्सीमेटली 6 चम्मच, चपका मींस हंकर्ड 10 चम्मच, बटर 2 चम्मच, ब्लैक पेपर 2 पिंच, ब्लैक पेपर का पाउडर लेना है हमें 2 पिंच, नमक स्वादानुसार, यहाँ पर मैं 2 चुटकी नमक ले रही हूँ, और ढेर सारा प्यार भी चाहिए। वैसे बच्चे तो इसे प्यार से ही बनाएंगे। अब हम फ्रूट सैंडविच बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले चक्का में नमक और ब्लैक पेपर पाउडर मींस काली मिर्ची पाउडर को मिक्स कीजिए, फिर उसमें मिक्स फ्रूट्स ऐड कीजिए, उसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। अब सारे ब्रेड स्लाइस पर एक बड़ी सी कटोरी रखकर उसे राउंड शेप में कन्वर्ट कीजिए। अब ये राउंड शेप वाले ब्रेड स्लाइस पर थोड़ा सा बटर लगाइए। बटर को आप ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड कीजिए। क्या आप जानते हैं ब्रेड पर बटर क्यों लगाते हैं? बटर लगाने से सैंडविच के अंदर भरी हुई स्टफिंग का मॉइस्चर ब्रेड के ऊपरी लेयर तक जल्दी नहीं पहुंचता। है ना इंटरेस्टिंग बात? अब उस बटर वाले ब्रेड पर आप चक्का और फ्रूट वाली स्टफिंग को स्प्रेड कीजिए। उस स्टफिंग को आप जरा ज्यादा ही यूज कीजिए। फिर उसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस रखकर उसे क्लोज कीजिए। अपने हाथों से उस ऊपर वाले ब्रेड स्लाइस को थोड़ा सा प्रेस कीजिए। जब अंदर की स्टफिंग उस सैंडविच से बाहर झांकेगी, तब वो सैंडविच ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा। आप चाहे तो उस बाहर झलकने वाली स्टफिंग पर थोड़े से मिक्स सीड्स, रोस्टेड मिक्स सीड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऐसा करने से सैंडविच एक स्टाइलिश लुक में दिखेगा। आप चाहे तो राउंड शेप वाले इस सैंडविच को बीच में से काट कर भी डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से बच्चा पार्टी स्पेशल हेल्दी फ्रूट सैंडविच हो गया है तैयार, और बच्चों के हाथों से बनी इस टेम्पटिंग ट्रीट को एंजॉय करने मम्मी डैडी है बेकरार। तो देर किस बात की, आज ही फ्रूट सैंडविच बनाइए, और ऐसी ही कुछ खास रेसिपीज को सुनने के लिए आचार्य 90 FM को अब भी सब्सक्राइब कीजिए।

आप सुन रहे हैं स्वाद का जायका और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे बच्चों को कुकिंग में शामिल करने के लिए शुरू में ऐसे जुगाड़ करने ही पड़ते हैं, और बच्चे अगर अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर कुकिंग सीखे तो वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। इससे शेयरिंग और केयरिंग वाली फीलिंग आती है। स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ होना मामूली सी बात है, इसीलिए घर के बड़ों का असिस्टेंस जरूरी है। फिर एक बार बच्चों में खाना बनाने का कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट आया तो कुकिंग उनका स्ट्रेस बस्टर बन सकता है। कभी कभी बच्चों को ही सुबह के नाश्ते की रेसिपी डिसाइड करने दीजिए। वैसे कुकिंग करते समय मेजरमेंट टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है, मीन्स मैथ्स और साइंस को भी कुकिंग से कोरिलेट कर सकते हैं, जिससे बच्चों के लिए हम एक टाइप का एजुकेशन ही दे रहे हैं। जरूरत है तो सब्र की। मटर छीलना, लहसुन छीलना, कोतमीर या मेथी की सब्जी को छांटना, मीन्स भाजा निवड़ने, ऐसे काम बच्चे आसानी से कर सकते हैं। लंच के समय छाछ बनाना या कचुम्बर बनाना, ऐसे आसान कामों में बच्चों को जरूर शामिल कीजिए। और चम्मच से खाना खाने की बजाय अपने साफ और धुले हुए हाथों से खाना खाने की हमारी भारतीय परंपरा को बच्चे और बड़े दोनों ही अपनाएं। हाथों से खाना खाने से हम उस खाने का टेक्सचर और टेम्परेचर महसूस कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा पूरा ध्यान थाली में रखे खाने पर रहता है, ना कि मोबाइल पर। और ऐसे तरीके से खाना खाने के बाद अन्नदाता सुखी भव, ऐसे शब्द अपने आप हमारे मुंह से निकलेंगे। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधियारे में उजाला है। कुछ पलों के लिए हो रही हूँ दूर, जल्दी ही मिलूंगी आपसे लेकर स्वाद के जायके का नूर। तब तक आप अपना

जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका रंग कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली आ रे, करता साया

फिर किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है तुम सब सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी पाप की आंधियां लाख हो कभी झुकती ना हारी तेरी।

बापू, मैं जा रही हूँ। जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है। चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: यस सर।
1: वहां दूर समंदर के पास हीरो खड़ा है दुखी, और जैसे ही हम उसकी फीलिंग्स रीड करते हैं कैमरा साथ साथ उस पे चार्ज करता है, और फिर रहमान साहब टेक ओवर करेंगे।

करे तेरे बेटो। तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं।

पहली पहली कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त मोरा पिया।

0: Just keep dancing with me, please, please. Look at me, please.
1: Arjun.
2: So?
1: Arjun?
2: Oh, Meera.
1: नाच रही हो क्योंकि तुम जेनिफर लोपेज की तरह डांस करती हो। क्योंकि यहाँ तुमसे सुंदर कोई नहीं
2: है। ये थोड़ा सा अच्छा झूठा।
1: क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, कल मेरे लिए बहुत या
2: मेरे लिए।
1: अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? कल मेरा यूएस कॉन्सुलेट में इंटरव्यू है वीजा के लिए। बस 6-8 हफ्ते और मैं यहाँ से सीधा अमेरिका।
2: मैं कल जा रही हूँ कानपुर। कल दुल्हन देखने आ रही हूँ। अच्छी नो, मैं दूल्हे को देख रही हूँ।
1: वाओ
3: आचार्य।

0: और शहीद हो गया। अरे क्या जरूरत थी उमर कैद ले लेने की, अच्छा भला था गले में फंदा डालिया।
1: क्यों जी, क्या खराबी है हमारी लड़की में?
0: आपकी लड़की इतनी बड़ी, वैसे आपकी उम्र क्या?
2: लक्स साबुन का कमाल है ये, और क्या।
1: अच्छा वो आपका
0: हो गया।
1: वैसे वो गले में फंदा डालने की क्या बात कर रहे थे? जब माला डालनी होती है तब क्यों कछुए की तरह गर्दन आगे कर देते?
0: वो क्या है कि इस कछुए को मालूम नहीं था ना कि इस गांव में आप भी हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका नाम?
1: बर्बादी।
2: क्या बात है आदि।
0: शादी बर्बादी होती है।
1: अच्छा तुम नहीं सही, लेकिन यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे लिए हंसते हंसते बर्बाद हो जाएंगे। करेला बैठ के चबाना, तुम और तुम्हारे चेले।
2: आदि क्या कहेगी यार?
3: मुंह मत लगाना आदि, कड़वी चीज है।

0: वैसे ये लड़की कौन है जो अभी अभी शगुन देगी?
1: क्या तुमको भी शगुन चाहिए क्या?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत बोलती है ना, बहुत तेज है
1: मिस्टर। वो मेरी बेटी है।
0: बेटी? नहीं, दिमाग बहुत तेज है, गड़बड़ हो गई, मर गए यार। वैसे उनका शुभ नाम क्या है?
1: लड़के बारात में आए हो वरना परात में डाल के गुन देता।

0: बर्बादी। असल में मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था।
1: मेरे पिताजी भी तुम्ही को ढूंढ रहे हैं।
0: अरे बाप रे, अरे भाग रे। हस्ती अच्छा है। वैसे मैंने तो सुना था कि गांव की लड़कियां बड़ी सीधी सादी और भोली भाली होती हैं, शर्मीली।
1: काकी इधर आओ।
0: काकी?
1: ये सीधी भी है और शर्मीली।
0: अरे
2: हाँ बेटा।
0: नमस्ते।